नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कुशल धनुर्धर या निशानेबाज को देखा है? जब एक शिकारी जंगल में किसी अत्यंत तेज और चौकन्ने हिरण का शिकार करने निकलता है, तो वह केवल तीर कमान हाथ में लेकर हवा में तीर नहीं चलाता। सबसे पहले वह अपने शरीर को एक विशेष मुद्रा में बिल्कुल अडिग और स्थिर करता है। अपनी कमान को पूरी ताकत से कानों तक खींचता है, अपनी सांसों को रोकता है और अपनी पूरी एकाग्रता और उस लक्ष्य पर टिका देता है। यदि उसका ध्यान जरा सा भी भटका या कमान ढीली पड़ी, तो वह चंचल हिरण एक ही छलांग में घने जंगल में ओझल हो जाता है और शिकारी का सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है। अध्यात्म की यात्रा भी बाहर के किसी जानवर के शिकार की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर कुलांचे भरते चंचल मन को साधने का एक महाअभियान है। कबीर साहब आज हमें उसी परम धनुर्धर की तरह अपने शरीर और प्राणों को साध कर मन का शिकार करने की कला सिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दार्शनिक सूत्र। काया कसु कमान जू पंच तत् करी बाण, मारो तो मन मिरग कु नाही तो मिथ्या जान। काया कसु कमान जू पंच तत् करी बाण, काया कसु कमान जू

श्रोताओं, कबीर साहब साधक को एक सच्चे आध्यात्मिक योद्धा की तरह ललकारते हुए कहते हैं, काया कसु कमान जू, हे साधक, तू अपनी इस काया यानी शरीर को योग, संयम और आसन की दृढ़ता से एक कमान यानी खींचे हुए धनुष की तरह पूरी तरह कस लें, इसे आलस और प्रमाद से मुक्त कर दें, पंच तत्व करी बाण और अपने भीतर के पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा अपनी पांचों प्राण ऊर्जाओं को एकाग्र करके ज्ञान और विवेक का एक अचूक बाण यानी तीर बना लो। अब उस अचूक तीर का निशाना कहाँ लगाना है? अगली पंक्ति में कबीर इसका लक्ष्य बताते हैं, मारो तो मन मिरग को। यदि तुझे सचमुच कोई शिकार करनी है तो बाहर किसी जीव को मत मार, अपने ही भीतर विषय वासनाओं के घने जंगल में बेतहाशा दौड़ रहे इस मन मिरग यानी चंचल मन रूपी हिरण को ज्ञान के तीर से साध लें, इसे शांत कर दें, नहीं तो मिथ्या जान। और यदि तू अपने इस मन को वश में नहीं कर सका तो समझ ले कि तेरी सारी बाहरी पूजा, सारे ग्रंथ, सारे तिलक और सारी साधनाएं मिथ्या यानी पूरी तरह झूठी, दिखावटी और व्यर्थ हैं। यह दोहा हठयोग और राजयोग के समन्वय का शिखर है। मुंडोपनिषद में भी प्रणव अर्थात ओम को धनुष, आत्मा को तीर और ब्रह्म को उसका परम लक्ष्य कहा गया है। मन को यहाँ मिरग यानी कस्तूरी मृग की तरह माना गया है जो अपने ही भीतर की सुगंध से अनजान होकर बाहर की झाड़ियों में भटकता रहता है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक शरीर और इंद्रियां अनुशासित नहीं होंगी और जब तक प्राणों की ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होगी, तब तक मन की इस चंचलता को भेदना असंभव है। असली विजय दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने ही मन को साधने में है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है। हम रोज अपने तीरों से दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमजोरियाँ और दूसरों की बुराइयों पर निशाना साधते रहते हैं। हम पूरी दुनिया को सुधारने का बीड़ा उठाए घूमते हैं, लेकिन हमारे भीतर का वह मन मिरग वासनाओं की हरियाली देखकर हर पल बेलगाम भागा जा रहा है। आज कोशिश कीजिए अपने भीतर का धनुधर बनने की, अपने शरीर को अनुशासन और अपनी सांसों को सजगता की कमान में कसिए, अपने विवेक का तीर सीधे अपने मन के अहंकार और चंचलता पर चलाइए। जब आप उस राम नाम के सुमिरन से अपने भीतर के इस मन को साध लेंगे तो आपकी सारी भटकाव शांत हो जाएगी और अपने ही भीतर परम आनंद के परम पद को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, उन स्किल्स को हम सीख रहे हैं। इस श्रृंखला में बात हो रही थी थॉट्स की, यानी कि हमारे ही विचार, जिन्हें अभी तक हमने ये समझा कि हर सिचुएशन पर डिपेंडेंट है और कभी भी आ जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, सजग हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं कि ये आते हैं तो कौन क्रिएट कर रहा है। बाहर से नहीं आ रहे, बल्कि वो सिचुएशन है जो हम याद करते हैं या हमारे सामने आ रही है, और फिर हम उन थॉट्स और फीलिंग्स को क्रिएट करते हैं। अगर मैं क्रिएटर हूँ तो मैं चेंज भी तो कर सकता हूँ। कैसे करना है ये जानेंगे। हमारे साथ हैं साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आप दोनों का स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: डॉक्टर पटेल, इट्स क्वाइट यू नो लाइक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट कि मैं खुद क्रिएट कर रहा हूँ। और एक और बात जो हम पिछली कड़ी में अगर जाएं तो बहुत इम्पोर्टेंट हमारे सामने आई थी कि जितने भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जितने भी अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं मेरी जिंदगी में, वो रिजॉल्व कोई व्यक्ति है या नहीं, वो सिचुएशन दोबारा होती है या नहीं, मैं कर सकता हूँ। इट्स अ बिग एश्योरेंस। आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ी थोड़ी सजग होनी शुरू हुई अपने शरीर के बारे में भी, बॉडी के बारे में भी और थॉट्स के बारे में। आगे क्या करें?
1: मूल बात तो ये समझने की है कि थॉट्स का महत्व क्या है। थोड़ा सा मैंने सोचा है कि विचारों पर विचार किया है ना, थॉट्स ऑन थॉट्स। हम सब ये तो जानते हैं कि एक दिन में हम 30,000 से 60,000 विचार करते हैं, परंतु आमतौर पर हम यह सोचते हैं कि भी विचार कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। परंतु सबसे पहली मुख्य बात तो यह है कि विचारों में भी जीवन है ना, थॉट्स ऑल्सो हैव अ लाइफ। तो इसलिए उसको कोई ऑर्डिनरी चीज हम ना समझे।
0: थॉट्स हैव अ लाइफ,
1: लाइफ आई फील, क्योंकि आत्मा से निकले विचार। तो सोल इज एनर्जी, तो उसकी थोड़ी तो एनर्जी उसमें भी होगी। नहीं, एक सचमुच एक सटल एनर्जी है थॉट्स भी, और वो थॉट्स जैसे है वैसे ही वातावरण भी बनता है, और थॉट्स उस चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आप सोच रहे हैं, उसी प्रकार के प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं और फिर उस चीज को आप अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए कहा गया है कि यू ग्रेविटेट इन द डायरेक्शन ऑफ योर डोमिनेंट थॉट्स। जो आप बार बार सोचते हो उसी दिशा में आप आगे बढ़ते हो।
0: तो मतलब हम बार बार कई बार डर रहे होते हैं तो वो हो भी सकता है?
1: बिल्कुल हो सकता है ना,
0: क्योंकि हम बार बार अगर आप थॉट्स ही तो क्रिएट कर रहे हैं ना, हमें डर है, फियर है, तो वो हम संभव भी करते हैं।
1: हाँ, वो सचमुच होता है। आज व्यक्ति बीमारी के बारे में सोचता है और वैसे बीमार होता है। ये भी माना गया है कि आज लोग एक्सीडेंट्स के बारे में जो बार बार सोचते हैं वो सचमुच एक्सीडेंट से मीट करते हैं। नहीं, उसी प्रकार का, क्योंकि थॉट्स आर रियल, वो वातावरण में उस चीज को क्रिएट करते हैं। कहते हैं कि थॉट्स हैव अ मैग्नेटिक पावर, जैसे मैग्नेट आयन को अट्रैक्ट करता है, ऐसे थॉट्स है वो परिस्थिति को अट्रैक्ट करते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात समझने की है,
0: तो पासा पलट दिया। आपने तो हमारे पर डाल दिया सारा कुछ।
1: नहीं, सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी बहुत ही जरूरी चीज है कि जो भी आपको फीलिंग्स होती है, अच्छी या बुरी, आप दुख की फीलिंग करते या सुख की फीलिंग करते, उसका फाउंडेशन आपके थॉट है। कई लोग कहते ऐसे मैं गुस्से में आ गया, ऐसे मैं डिप्रेस्ड हो गया। एटलीस्ट सबकॉन्शियसली तो थॉट था,
0: पर अब सब पता नहीं चलता। अगर आप मतलब बार बार हमने इस बारे में बात की है कि आप थॉट्स को देखो, थॉट्स के प्रति सजग रहो। अब जैसे अभी मैं क्या सोच रही हूँ वो तो मैं सजग हो जाऊंगी कि ठीक है, मैं यहाँ प्रोग्राम में बैठी हूँ, इसके बारे में सोच सकती हूँ। लेकिन जैसे ही वो फीलिंग आई, वो जो बिल्कुल ठीक है कि जैसे डिप्रेशन आ जाता है, एकदम से हार्ट सिंक करने लगता है, दुख आ जाता है या गुस्सा चढ़ना शुरू होता है, उस वक्त ये तो समझ में नहीं आता कि हमने क्या सोचा था कि गुस्सा आया। गुस्सा होने के बाद हमें वो थॉट्स दिखने शुरू हो जाते हैं कि गुस्सा आया है, अब मुझे गुस्सा चढ़ रहा है और चढ़ता जा रहा है या कम होगा, वो मेरे थॉट्स पे डिपेंड कर रहा है।
1: लेकिन कम से कम ये भी कि जो आपका हार्ट जैसे सिंक होने की आपने बात कही, कई बार हो सकता है कि भी पता ही नहीं क्यों सिंक हो रहा है। लेकिन ये तो एक्सेप्ट करो कि भी कोई ना कोई विचार है, भले आज से 10 साल पहले जो घटना हो गई उसका कोई विचार है, एक अर्ध जागृत रूप में वो विचार आ रहा है, पर विचार जरूर है। वह जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसको ढूंढ भी सकेंगे। तीसरी बात है कि विचार आपके कंट्रोल में है, जो हमने पहले भी इसकी चर्चा की कि भी हम उसको चूज करते हैं। जो आमतौर पर लोग कहते हैं विचार आ गए, ऐसी बात नहीं, वह हमारे कंट्रोल में है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि एक एप्पल में कितने बीज आप गिन सकते हैं। मैं आपको एक एप्पल दूं, आप उसको कट कर लो, गिनती करो तो गिनती हो जाएंगे, परंतु एक बीज में कितने एप्पल गिन सकते हो?
0: नहीं, I can't. I don't think so.
1: Yeah.
0: No way.
1: Yeah.
0: क्योंकि एक बीज से अगर कितने सारे एप्पल्स हुए तो उन एप्पल्स के भी तो कितने सारे बीज के हो सकते हैं?
1: वो भी और बात है आगे तो, लेकिन फिर भी एक बीज से हजारों एप्पल हो सकते हैं। ऐसे एक विचार भी बीज है। एक विचार आपके जीवन में बहुत आनंद भी ला सकता है, सुख भी ला सकता है, साथ साथ वही एक विचार आपको दुखी दुखी कर सकता है। न केवल आपको और हजारों लोगों को भी वह एक ही विचार दुखी कर सकता है,
0: खुशी भी दे सकता है,
1: हजारों को दे सकता है। हाँ। तो वह सीड है। मुख्य बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि एक विचार है, वह सीड है। और एक जिस पर मैंने गहराई से सोचा कि भी विचार क्या करते हैं, जैसे जब नदी बहती है जमीन से तो है ना, वो अपनी जगह क्रिएट करती है, ग्रूव्स क्रिएट करती है वास्तव में। तो ऐसे विचार भी कॉस्मोस में एक सटल ग्रूव्स क्रिएट करते हैं।
0: और अच्छा, विचारों की नदी बहती जा रही है।
1: हाँ, बस विचारों की नदी है, वो वातावरण के अंदर उस प्रकार से ग्रूव्स क्रिएट करते हैं। और फिर जो सारी कॉस्मोस में एनर्जी है, जैसा आपने ग्रूव क्रिएट किया उसी प्रकार की एनर्जी वहां पर फ्लो होगी।
0: अच्छा, आकर्षित हम उसको,
1: हाँ, उसको आकर्षित करेगी। तो ना, इतना महत्व, सबसे पहले अगर इस महत्व को हम समझ ले तो फिर आगे के स्टेप्स भी सहज होंगे।
0: ओके, शिवानी, विचारों का ये जो एक अननोइंगली हमने क्रिएट किया, कि जो अभी बताया डॉक्टर पटेल ने कि इट्स सो पावरफुल, मतलब वो, लेकिन अभी तक तो हम पता नहीं कितना कुछ पावरफुल क्रिएट कर चुके हैं। और जैसा कि बात ये हो रही है, अगर कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जो हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा होने भी लगता है, तो मैं तो बहुत अच्छा भी सोचते हैं, मैं तो बहुत कुछ सोचती हूँ, वो बहुत कुछ तो नहीं होता फिर?
2: अब इसको भी चेक करना है। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मुझे इस एग्जाम में पास होना ही है, वेरी गुड थॉट। फिर मैं सोचती हूँ हो जाऊंगी ना, लेकिन तैयारी है ना मेरी पूरी, लेकिन मैंने तो तैयारी कर ली है। लेकिन आजकल ना एग्जामिनर्स पे बहुत डिपेंड करता है, वो एग्जामिनर कैसा होगा, उसका मूड कैसा होगा, वो मेरी फेयर चेकिंग करेगा या नहीं करेगा। All these are also thoughts, na? Not that only one thought. Normally क्या होता है, हम कहते हैं मैंने positive thought create किया है, हाँ, कि मुझे ये करना है, ये चाहिए। हम वो नहीं सोचते कि उसके साथ साथ कई बार हमने बहुत सारे ordinary thoughts और कई बार तो थोड़े negative fear के thoughts भी create कर लिए, तो वो भी तो energy है। So that's why sometimes we are not able to achieve even in the outer world जो हम achieve करना चाहते थे, because energy बहुत सारी flow की है। अगर आप कोई एक थॉट को ले लें और उस पर ही अपनी एनर्जी को फोकस करें, उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए।
0: अब एक ऐसे कैसे, सी इट कम्स एज अ फैमिली, सी थॉट्स विल ऑलवेज कम, एक थॉट थोड़ा रह पाएगा।
2: एक थॉट इन द सेंस आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट क्या, अगर आपने क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट किए सक्सेस की, जो भी आप कार्य करने वाले हैं उसमें सक्सेस, फिर सक्सेस के साथ फियर, फियर के साथ डाउट, डाउट के साथ एंग्जाइटी, ये सारी फैमिली नहीं आनी चाहिए ना। एक ही परिवार को चूज करो, एंड दैट परिवार शुड बी द पॉजिटिव सक्सेसफुल हैप्पी परिवार, चूज दैट, डोंट मिक्स द टू थिंग्स। एंड क्योंकि बहुत समय से आदत है ज्यादा नेगेटिव सोचने
0: की,
2: नहीं, व्हाट इज हैपनिंग, द रिस्क क्या है। सी पॉजिटिव थिंकिंग, आज हम लोग अवेयर हो रहे हैं तो हम धीरे धीरे कल्टिवेट कर रहे हैं। नेगेटिव थिंकिंग सो कॉल्ड ऑटोमेटेड मोड में गई हुई है कि पता ही नहीं चल रहा, आ रही है, तो हम ये नहीं रियलाइज करते कि हम एक पॉजिटिव थॉट तो एनवायरनमेंट में भेजते हैं, लेकिन कई बार उसके साथ जो नंबर ऑफ नेगेटिव थॉट्स है वो ज्यादा होती है वो पॉजिटिव थॉट से। सो आई हैव टू बी अवेयर ऑफ एवरी थॉट दैट आई एम क्रिएटिंग। जैसे गिरीश भाई ने कहा, ठीक है, हो जाएगा, सब ठीक चल रहा है, होगा या नहीं होगा, ठीक मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन क्या सचमुच ये हो जाएगा? Then what happened?
0: But doubt तो रहता ही है।
1: शिवानी ने बहुत अच्छा कहा कि वो एक थॉट है कि एग्जाम में मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन डाउट, एंग्जाइटी, फियर, उसके बदले पॉजिटिव फैमिली क्या हो कि आई कैन डू इट, ना, मेरे में वो क्षमता है।
0: लेकिन फिर मैं अपने आप को झूठ देखे, एक बात है, फिर मुझे कई बार लगता है कि मैं अपने आप को गलत फहमी में रख रहा हूँ कि मैं अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा। लेकिन मुझे अवेयरनेस है कि ये सारी चीजें भी तो होती हैं। एग्जामिनर जो है, ये मेरे पास नॉलेज, ये भी तो, जैसे आपने कहा कि नॉलेज से आप, जैसे आपको नॉलेज मिलती है आप उस पर काम करना शुरू करते हैं, आई हैव द नॉलेज कि एग्जामिनर जो है वो सही तरीके से कई बार नहीं देखते हैं, एग्जामिनर जो है या बाकी सारी चीजों के बारे में भी नॉलेज जो नेगेटिव है. सो आज मैं अपने आप पे ये थॉट तो क्रिएट किया कि मैं पास हो जाऊं, मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे मार्क्स लाने, मैं मेहनत भी कर रहा हूँ. लेकिन उसके बाद जो मेरे फियर्स हैं, अगर मैं उनको वो आते मतलब या जो मैं क्रिएट करूँ तो वो नहीं क्रिएट करूँ तो मैं अपने आप को धोखे में भी तो रख रहा हूँ ना.
1: पॉसिबिलिटी थॉट है कि भी आप जो सोच रहे हो पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम अगर ये सोचे कि मैं अगर थॉट करूंगी कि मैं पास होने वाले हूँ, अच्छे अच्छे मार्क आने वाले, यहाँ तक मनोविज्ञान में मानने लगे कि आपका पेपर ऐसे ही एग्जामिनर के पास जाएगा, वो आपको अच्छे नंबर देगा.
2: एब्सोल्युटली. जैसे उन्होंने कहा कि जो आप थॉट क्रिएट करेंगे वो वाइब्रेशन है, वो एनवायरमेंट में है, वो अट्रैक्ट करेगी उस सिचुएशन को आपकी तरफ. अभी पर्सनली आई टेल यू, एग्जाम तो नहीं आते अभी कोई ऐसे, लेकिन सपोज आई गो टू अ शॉपकीपर जहाँ सब्जी तोली जा रही है. कई बार कुछ लोग सब्जी अपने तुलवा रहे हैं लेकिन ये तो करते हैं चीटिंग, इनका वेट सिस्टम पता नहीं ठीक है कि नहीं है, ये पता नहीं अच्छी क्वालिटी की सब्जी दे रहा है कि नहीं. दैट पर्सन इज बाउंड टू चीट यू.
0: नो बट दे चीट, सी
2: नाउ जस्ट गो नेक्स्ट टाइम.
0: हां,
2: एब्सोल्युटली क्लीन, एब्सोल्युटली. चाहे आप वो शॉपकीपर के पास हैं, चाहे आप टैक्सी में बैठे हैं, कोई आप ऑटो रिक्शा में, हम बैठते ही हैं ऑटो रिक्शा में. आजकल के तो ऑटो वाले सब ऐसे ही हैं, सब चीट करते हैं, किसी का मीटर भी ठीक नहीं हो. यू नो वी आर सो मच फिल्ड विद ऑल दिस नेगेटिव एनर्जी. वो आप यहाँ बैठे हैं, वो यहाँ बैठा है, आप उसके प्रति ऐसी सारी एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, वो उस तक पहुँचेगी, उसने चीट करना है फिर. अब आप बैठे एक डिफरेंट थाट प्रोसेस के साथ, बट डोंट मेक इट प्योर 100% क्लीन. ये समझ में आ गया कि जैसी थॉट मैं क्रिएट करूंगा आई ग्रेविटेट दैट सिचुएशन टुवर्ड्स मी.
0: बट उसकी मैं उसकी नेचर को बदल सकता हूँ. अगर
2: आई ग्रेविटेट दैट सिचुएशन टुवर्ड्स मी मतलब लोगों की सोच और परिस्थितियां मेरी सोच के अनुसार मोल्ड होती जाएंगी ना. सिचुएशन नहीं तो है ही क्या, बिना लोगों के तो कोई सिचुएशन नहीं है.
0: अभी तो मैं एक तरफ ये कह रही थी कि लोग तो कभी चेंज नहीं होते, एक तरफ आपने बड़ी मुश्किल से हमें ये समझाया.
2: हम पहले ये सोच रहे थे कि लोग चेंज हो जाए.
0: हाँ,
2: सो वी वर क्रिएटिंग अ नेगेटिव थॉट फॉर देम. अगर मैं आपके लिए ये सोचूं कि ये चेंज हो जाए, मतलब मैं आपके प्रति क्या सोच रही हूँ,
0: ये अच्छी नहीं है अभी.
2: सी व्हाट क्वालिटी एनर्जी इज दिस. तो जैसे ही मैंने आपको नेगेटिव भेजी, रिटर्न आपसे भी क्या आएगा, ये चेंज
0: तो,
2: हो जाए.
0: हाँ, मैं तो कभी चेंज नहीं हूँ.
2: हाँ, सी दैट इज द एनर्जी. तो अगर मैं आपके चेंज होने के बारे में ना सोचकर अपनी थॉट्स को थोड़ा सा प्योरिफाई करने लगू, क्लीनिंग करने शुरू, तो मेरे से आपको कौन सी एनर्जी जाएगी? पॉजिटिव जाएगी. जैसे ही मेरे से आपको पॉजिटिव जाएगी, धीरे धीरे आपसे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. एंड आई विल थिंक यू हैव चेंज्ड, बट एक्चुअली यू हैव नॉट चेंज्ड. एक्चुअली फर्स्ट आई हैव चेंज्ड,
0: बट देन यू सी योर चेंज वाज एबल टू चेंज मी
2: बिकॉज इट्स वाइब्रेशन. जो एनर्जी ऐसे जाएगी वो एनर्जी ऐसे आएगी. हमें मुझे जब अपनी थॉट्स की अवेयरनेस नहीं थी, जो हम शुरू से देख रहे हैं अवेयरनेस नहीं है, तो मुझे एनर्जी सिर्फ ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी. ये मेरे से कैसे बात करती है, ये मेरे से कैसे बिहेव करती है, ये इक्वेशन नहीं पता था कि ये उसी का रिटर्न है जो यहाँ से जा रहा है. यहाँ से आती हुई एनर्जी को हम नहीं चेंज कर सकते. हमारी सारी स्ट्रगल किस पे थी, आपने कहा मेहनत क्यों लग रही है, हम वो आते हुए तीर को चेंज करना चाहते थे, चेंज चेंज अपने डायरेक्शन को चेंज कर लो. नहीं, इस तरफ नहीं चेंज होगा. आई चेंज व्हाट आई सेंड, that I have to change and very powerful. ये नहीं एक positive thought उसके साथ 10-15 negative thought, then तो कौन से तीर फेंके, फिर वो ही वापस आएंगे, फिर कहेंगे मैंने तो अच्छा सोचा था उनके बारे में. चेक करना कितना अच्छा सोचा था और कितना कुछ कुछ और सोचा था.
1: इट विल दो बातें इसके अंदर, एक तो है कि जब हमने टैक्सी की बात की ना कि भी टैक्सी वाला ऑटो वाला, आप अच्छी वाइब्रेशन दो तो जो टैक्सी वाला आपके पास आएगा ना अच्छा ही होगा.
2: No, and I yes, absolutely, yeah. Personally experienced. I was staying in another city pehle. About 8 years back, we shifted to Delhi. Pata kya information milti hai yahan shift karne se pehle? Delhi mein na बहुत लोग चीट करते हैं. दिल्ली में जो बहन आपके घर काम करने आएगी वो भी ऐसे ही होगी. टैक्सी तो बहुत चीट करती है, ऑटो. फिल फिल फिल योर सेल्फ. 8 years आई हैवंट फाउंड एनी वन चीटिंग मी, सिंपली बिकॉज आप अपनी थॉट को चेंज करो. क्यों, वो हमारी तरह हैं वो लोग, लेकिन हम उनको इस तरह की एनर्जी देते हैं. वो वाइब्रेशन नेगेटिविटी हर एक के अंदर ऑलरेडी काफ़ी सारी है. आप जैसे ही स्टिम्युलस भी नेगेटिव भेजोगे तो उसकी नेगेटिविटी को आप ट्रिगर करोगे. लेकिन ज्ञान हमें ये समझाता है कि इनहेरेंटली हर एक बहुत प्योर और पॉजिटिव सोल है. अब आप उसके पास वो वाला तीर फेंको तो तो उसकी पॉजिटिविटी ट्रिगर होगी। ये चॉइस हमारे पास है, ये पावर भी हमारे पास है,
1: मतलब हम करके देखना चाहिए। मैंने
2: बहुत वर्क
1: कई बार देखा, एयरपोर्ट पे जाते हैं देखा टैक्सी वाला सामान उतार के ट्रॉली तक रख देता है, उसकी ड्यूटी नहीं है वो।
0: इसका मतलब हमने ये किया कि मतलब कई बार लोग बोलते हैं कि आप आंख मूंद के फिर जी रहे हो, कि आप देख ही नहीं रहे कि आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन थिंग कि आई नो सामने वाला करप्ट है, मतलब मुझे पता भी चल गया अगर एंड आई हैव टू डील विद हिम। सपोज मैं कोई काम करवाने भी जा रही हूँ और सामने वाला करप्ट है, पता है, तब मैं क्या ये वाइब्रेशंस उसको दूं कि नहीं आप प्योर हैं, आप सच्चे हैं, तो ये मैं अपने आप से झूठ नहीं कर रही।
1: पहले तो दो, उसमें कुछ तो चेंज आएगा,
2: मतलब बट हैव द फेथ इन योर सेल्फ फर्स्ट। ये नहीं कि अच्छा मैं बोल तो रही हूँ ये प्योर है लेकिन वैसे तो ये करप्ट है,
0: हाँ
2: तो फिर क्या, फिर कौन सी थॉट क्रिएट।
0: एक तरफ है फैक्ट, एक तरफ है मेरी सोच।
2: हाँ
1: ये भी इफेक्ट नहीं है। देखो आपने कभी एक नदी में दो बार स्नान किया है?
0: हाँ, कभी सुबह और शाम।
1: एक्चुअली देखो आपने जो दो बार स्नान किया सवेरे शाम, लेकिन नदी तो बह रही थी, पानी तो बदल गया था, बल नाम हुआ था परंतु पानी तो सेम नहीं था।
0: हाँ,
1: तो कहते आप एक नदी में दो बार स्नान नहीं कर सकते,
0: एक पानी में। हाँ, मतलब
1: नदी कहो।
0: हाँ,
1: तो ऐसे कहते आप एक व्यक्ति को दो बार नहीं मिलते हो,
0: व्यक्ति बदल गया।
1: हाँ, आज मैं आपको मिला हूँ, कल मिलूंगा तो यू आर डिफरेंट, आपके विचार बदल गए।
0: हाँ,
1: है ना, मेरे प्रति आपका दृष्टिकोण बदल गया। तो इससे जो आपने वो कहा ना कि वो फैक्ट, इट इज नॉट अ फैक्ट,
0: पीपल चेंज।
1: हाँ, वो व्यक्ति को कल शायद ठीक है, भी दो दिन पहले वो करप्ट था, आज उसमें परिवर्तन आ गया। तो क्यों उसी नजरिए से देख रहे हो, उसके प्रति पॉजिटिव वाइब्रेशन दो।
2: एक्चुअली कोई है, किसी में कोई थोड़ी सी कमजोरी है जैसे करप्शन है कोई भी, हम सब उसी के ऊपर चिंतन कर करके उसको सभी लोग ये एनर्जी भेजेंगे कि ये तो करप्ट है, ये तो करप्ट है। तो जितनी उसके पास वो एनर्जी जाएगी उनका वो संस्कार
0: स्ट्रॉन्ग
2: और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। दैट इज वेयर वी ऑल कैन एक्चुअली बी फोर्स विद ईच अदर हाउ टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। कि इसीलिए परमात्मा हमेशा कहते हर एक की विशेषताओं को देखो। दो बातें हैं, जितना आप कमजोरियों को देखेंगे, पहली बात तो वो कमजोरी आपकी बनती जाएगी। क्यों? क्योंकि हम किसका चिंतन करते गए, ये तो ऐसे हैं, ये तो गुस्से वाले हैं, ये तो करप्ट है। तो मेरी अपनी कॉन्शियसनेस की लेवल क्या होती जा रही है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है। उनको कौन सी एनर्जी भेज रहे हैं, वो ही भेज रहे हैं। मेरा भी नुकसान, उनका भी नुकसान। विशेषताओं को देखो, विशेषता मेरी भी बनती जाएगी वो, और वो एनर्जी उन तक पहुंचेगी, उनकी विशेषता पक्की होती जाएगी।
0: तो शिवानी आपने कहा कि विशेषताएं देखें हर एक की और नेगेटिविटीज ना देखें, लेकिन मेरे सामने है वो नेगेटिविटी, मैं चलिए एक्नॉलेज नहीं भी कर रहा पर दिख तो रहा है, मैं उस पर फोकस नहीं भी कर रहा, बट क्या मैं उनको इग्नोर कर सकती हूँ?
1: बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे विचार करेंगे वहां तक पहुंचने, एक बात हमने समझ ली। दूसरी बात, वो व्यक्ति परिवर्तित भी हो रहा है। और तीसरी बात है कि उसे हम लेबल ना करें। आज जब बोलते हैं कि ये करप्ट है तो आप उसने लेबल लगा दिया, तो फिर सदैव के लिए बोले वैसा ही रहे। आप और सोच लिया, आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं आपने उन्होंने लेबल लगा दिया कि ये स्मार्ट नहीं है, तो ऑलवेज उस तक वो वाइब्रेशन पहुंचे वैसा ही रहेगा। विशेष बच्चों के लिए कभी नहीं करो। आज अधिकतर माता पिता बच्चों को लेबल कर देते हैं कि छोटा वाला स्मार्ट है, बड़े वाला बुद्धू है, वो कभी ठीक काम से नहीं करता है। जैसा आपने सोचा वैसा ही होता है। इवन क्लासरूम में रिसर्च स्टडीज भी की गई है,
0: लेकिन वो तो कर ही रहा है ना वैसा।
1: नहीं, आप देखिए रिसर्च स्टडी को आप समझिए तो भी आप कन्विंस हो जाएंगे इस बात के लिए कि एक क्लास में नए टीचर आए और सभी बच्चों के जो उनके मार्क्स थे पिछले क्लास के उनको दिए गए, किसको भी इसकी फर्स्ट ग्रेड है, इसकी सेकेंड, इसकी थर्ड है, ऐसे बच्चों को दिया, और फिर एक साल के बाद उनका परफॉर्मेंस देखा, तो ये पाया कि भी जिसको बताया था कि इसकी फर्स्ट ग्रेड है तो उसको फर्स्ट ग्रेड ही आई, कहा कि भी ये थर्ड ग्रेड का है उसकी करीब करीब थर्ड ग्रेड ही आई। और प्रैक्टिकली रिसर्चर्स ने क्या किया था, पूरा उल्टा कर दिया था। जिसकी फर्स्ट ग्रेड आई थी उसको कहा था इसकी थर्ड ग्रेड है, जिसकी थर्ड थी उसको फर्स्ट बना दिया था। तो इसका कंक्लूजन ये हुआ कि भाई टीचर का जो इंटरप्रिटेशन है, तो टीचर तो ये सोचा था कि ये लड़का स्मार्ट है भले वो था बुद्धू,
0: और वो सोचता रहा और उसकी थॉट्स ने, उसके पूरा लेबलिंग ने उसको फर्स्ट ही बना दिया।
1: न केवल लेबलिंग, लेकिन अप्रोच भी।
0: हाँ,
2: आपका पूरा थॉट, एटीट्यूड, बिहेवियर, बात करने का तरीका,
1: समझाने का तरीका,
2: कुछ ही वैसे चेंज हो जाएगा ना। देखो कोई आपको लगे ये तो बुद्धू है तो आपका थॉट कैसे चलेगा? इसको तो कितना भी समझाओ, इसको तो समझ में नहीं आने वाला, ये तो बुद्ध. सो यू डोंट पुट इन दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड दैट एफर्ट. लेकिन एक आप स्टूडेंट को देख रहे हो कि ये तो फर्स्ट ग्रेड स्टूडेंट है, यू नो यू हैव दैट एनर्जी, यू हैव दैट लुक ऑन योर फेस, योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी सब कुछ चेंज हो जाती है, और एनर्जी, थॉट एनर्जी तो
1: जाएगी.
0: अच्छा, अनदर थिंग व्हिच आई वांटेड टू आस्क इज कि आपने कहा कि दूसरे की विशेषता देखोगे या कमजोरी देखोगे तो वो आप में आ जाएगी. यू सेड समथिंग लाइक दैट. हाउ इज दैट पॉसिबल?
2: बिकॉज मैं चर्न कर रहे हो उस थॉट के ऊपर. सपोज आपके अंदर गुस्से का नेचर है, आपके गुस्सा करने के, एंड मैं बार बार ये थॉट क्रिएट करती हूँ, ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, तो गुस्से वाले हैं, इनको बात करने का तरीका भी नहीं आता. वट काइंड ऑफ एनर्जी एम आई क्रिएटिंग? सी, अब ये एनर्जी क्रिएट करते करते मैं आपसे कैसे बात करूंगी? अब मैं भी आपको गुस्से से बात करूंगी, ऑटोमेटिकली वो होगा ही. इट विल बिकम, बिकॉज आई हैव बीन चर्निंग ऑन दैट नेचर ऑफ योर्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि ये गुस्से वाले हैं, चाहे इनसे कैसे भी प्यार से बात करो, ये तो ऐसे ही बात करते हैं. अगली बार तो ना मैंने बात ही नहीं करनी इनसे. ऑल दिस इज माई थॉट गोइंग ऑन, सिर्फ क्योंकि मैंने आपकी वो एक कमजोरी देख ली है. तो धीरे धीरे मेरा आपके प्रति सोचने का तरीका चेंज हो गया, फिर व्यवहार चेंज हो गया, फिर एक बार मैंने आपसे इस तरह से बात करना शुरू किया, धीरे धीरे वो मेरा संस्कार बनता गया, और धीरे धीरे मेरा संस्कार कैरी फॉरवर्ड होगा, वो सबके साथ ऐसा बनता जाएगा.
0: लेकिन मुझे आप गुस्सा करते हो, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो लेकिन वो मैं अपने अंदर कैसे इनकल्केट कर रहा हूँ?
2: क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना बाद में, नहीं अनोइंगली नहीं है, मैं कंटिन्यूसली आपकी उस आदत के बारे में सोचती हूँ, और मैं ये फील करती हूँ कि जो मैं फील कर रही हूँ उसके जिम्मेवार आप हो, और मैं आपके क्रोध के संस्कार पे चिंतन कर रही हूँ, तो मेरी एनर्जी कैसी क्रिएट हो रही है? दिस आई हैव टू अंडरस्टैंड ना, कि सपोज मैंने आपकी पेंसिल ली, क्रोध की आपकी पेंसिल ली, मैंने कहा ये पेंसिल टूटी हुई है, अब इससे मैंने डायग्राम बनाना शुरू कर दिया, तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? यहाँ पे एक डायग्राम ही बन रहा है ना. सारा दिन कंटिन्यूसली हम ग्रूव क्रिएट करते रहते हैं. कौन सी पेंसिल लेके क्रिएट किया था? ये गुस्से वाले हैं. वॉट एनर्जी वेन आई एम थिंकिंग लाइक दैट, हाउ एम आई गोइंग टू फील? एंड फिर ऑटोमेटिकली मेरा बिहेवियर आपके साथ कैसा होगा? फिर मैं किसी और से आपके बारे में बात करूंगी तो कैसी एनर्जी क्रिएट करूंगी? तो गुस्सा तो आपका संस्कार था. ये ना जब हम किसी को बोलते हैं तो बहुत गुस्से वाले हैं, कैसे बोलते हैं?
0: वैसे
2: तो आपको पता है ये तो बहुत गुस्से वाले हैं, ऐसे तो नहीं बोलते. आपको पता है ये बहुत गुस्से वाले,
0: रिजेक्ट करके बोल रहे
2: हैं. नो नो, माय वे ऑफ टॉकिंग आल्सो बिकम्स लाइक दैट बिकॉज आई एम टॉकिंग नेगेटिव. व्हाई? बिकॉज आई एम थिंकिंग नेगेटिव. तो ये बहुत बहुत सूक्ष्म है, इट्स अ वेरी सटल वे. हमें अवेयरनेस भी नहीं होती कैसे वो हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारा संस्कार बनता जाता है. जो आपने अभी पूछा था ना कि कमजोरी है उनके अंदर, तो हम क्या करें? एक है अवेयरनेस कि किसी के अंदर ये कमजोरी है. इवन अगर आपको ये दिखाई दे रही है, डोंट कीप इट हियर. परमात्मा कहते हैं उसकी कमजोरी अपने चित्त पर मत ले लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मुझे अवेयरनेस है आपके अंदर ये कमजोरी है, ओके मैं आपको वो वाला शायद काम नहीं दूं थोड़े दिन या कुछ भी, आई टेक स्टेप्स, लेकिन मैं उसको अपने चित्त पर नहीं लूं. मतलब मैं उसके बारे में चिंतन ना करूं ताकि मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड रखूं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको कौन सी एनर्जी भेजूं. तो अगर मेरे से आपको डिफरेंट एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपका वो संस्कार धीरे धीरे परिवर्तन होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे गिरीश भाई ने कहा इन द फैमिली, यू नो एक व्यक्ति लेबल लगाता है कि ये तो बुद्धू है, बहुत जल्द बहुत लोग वही लेबल लगा देते हैं. सब लोग कहते हैं इससे तो वो हो ही नहीं सकता.

0: रिएक्ट नहीं करूँ, यू टेक इट अप एज एन एक्सपेरिमेंट, आई एम गोइंग टू हेल्प हिम यू नो कल्टिवेट दिस थिंग इन टू योर सेल्फ. हम कई बार देते भी हैं तो हम कहते हैं देते
1: पता
0: हैं,
1: है, हाँ
0: फिर थोड़ा पहले ही थॉट होता है पता नहीं ये कर पाएगा कि नहीं, और अगर थोड़ा सा उसने 1% भी उसमें कुछ गलती कर दी, इमिजिएट थॉट, मुझे पता था इसको तो देना ही नहीं चाहिए था, फिर मैं उसका और डैमेज कर देती हूँ. मुझे करना है तो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से तैयार करके करना है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग दिस हैबिट. उसमें थोड़ा सा प्लस माइनस होगा थोड़ी देर, लेकिन वो पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर वो हैबिट कल्टिवेट कर देगी. हम एक बार करते हैं एंड वी एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट, फिर हम उनको चार बार सुनाते हैं, मैंने आप पर पिछली बार विश्वास रखा था, क्या किया आपने, क्या रिजल्ट आपने उसका दिया, देन इट जस्ट गेट्स वर्स एंड देन वी थिंक कि हमने उस पर फेवर की, हमने उसको ट्राई किया, ही इज़ नॉट वर्थ इट, फिर हम कहते हैं फ़ायदा नहीं उस पर विश्वास, तो फिर वो बहुत सारी एनर्जीज और भी नेगेटिव हो जाते हैं. तो अपनी पूरी तैयारी करके फिर उनके ऊपर काम करना है, पहले काम अपने ऊपर करना.
2: एडिसन के लिए कहते हैं कि जब उन्होंने बल्ब को इन्वेंट किया और उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जा रहे थे, तो अकेले पहली बार जब जा रहे थे तो जो व्यक्ति कैरी कर रहा था तो बल्ब गिर गया, तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ था, बड़ा डेंजरस चीज थी. तो रात भर जाग करके एडिसन ने नया बल्ब तैयार किया, फिर सवेरे वो डेमोन्स्ट्रेशन होना था, तो फिर से उसको उस ट्रे में दिया कि तुम वहां तक ले. सबने कहा नहीं नहीं नहीं सर आपको नहीं मालूम है. कल शाम को तो इसने तोड़ दिया है बल्ब, फिर से तोड़ दिया. कहा नहीं नहीं यही बल्ब को ले जाएगा. उसने कहा कि देखो बल्ब फिर से भी टूट गया ना तो नया बन जाएगा, पर तो इसका दिल टूट गया तो नया नहीं बन सकता. उसी को दिया कि तुम संभाल के ले जाओ.
1: बिल्कुल. और आज अपने ही विचारों से, उनकी शक्ति से हमें वाकिफ कराया आपने. अब इन स्किल्स को और आगे हम देखते जाएंगे. डॉक्टर पटेल, मिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच. तुम शांति. बहुत बार सुना था और बड़े बड़े लोग बहुत सी बातें भी करते हैं कि थॉट में जो है वो बहुत पावर है, आपके अपने विचार जो हैं वो बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं. हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ा है, बहुत सी किताबें, प्रैक्टिकली नहीं समझ पा रहे थे. अब जब छोटी छोटी तरह से ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो मैं सोचता हूँ, मतलब जाने अनजाने ही अभी तक ये हो रहा था कि कोई भी विचार आता था हम उसके साथ ही बहने लग जाते थे. एक थॉट आया, अभी तक हम कहते थे आया. अब सिस्टर शिवानी और डॉक्टर पटेल ने हमें बहुत क्लियर किया है, हमने क्रिएट किया वो एक थॉट, उसके साथ हमने बहुत सारा एक समा बांध दिया थॉट्स का ही, एक पूरी जर्नी की. देखना ये है कि हमने किस फैमिली के थॉट्स लिए. और परिवारों की हम बात करते हैं, ये परिवार अवेकनिंग का है, तो साथ ही अब चलिए विचारों के परिवार पर चलते हैं कि हमने वो पॉजिटिव थॉट्स के विचार क्रिएट किए, पॉजिटिव थॉट्स की फैमिली क्रिएट की या नेगेटिव थॉट्स की, ये हम देखते जाएंगे. थोड़े थोड़े अवेयर होते जाएंगे तो शायद हम उन स्किल्स को इनकल्केट करने के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे. मन में कोई बात, कोई सवाल उठ रहा है, आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद रामा कुमारी में आज इतना ही. लाइफ स्किल्स के इस श्रृंखला में आगे बहुत कुछ अभी बाकी है. मुलाकात होगी. ओम शांति.

ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, उन स्किल्स को हम सीख रहे हैं। श्रृंखला में बात हो रही थी थॉट्स की, यानी कि हमारे ही विचार, जिन्हें अभी तक हमने ये समझा कि हर सिचुएशन पर डिपेंडेंट है और कभी भी आ जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे समझ रहे हैं, सजग हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं कि ये

शॉपकीपर के पास जाए, टैक्सी में बैठे हैं, कोई ऑटो रिक्शा में, आप बैठ

0: धीरे आपसे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, एंड आई विल थिंक यू हैव चेंज्ड, बट एक्चुअली यू हैव नॉट चेंज्ड, एक्चुअली फर्स्ट आई हैव चेंज्ड.
1: But then you see, your change was able to change me.
0: Because it's vibration. जो energy ऐसे जाएगी, वही energy ऐसे आएगी. हमें मुझे जब अपनी thoughts की awareness नहीं थी, जो हम शुरू से देख रहे हैं, awareness नहीं है, तो मुझे energy सिर्फ ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी. ये मेरे से कैसे बात करती है, ये मेरे से कैसे बिहेव करती है, ये equation नहीं पता था कि ये उसी का return है जो यहाँ से जा रहा है. यहाँ से आती हुई energy को हम नहीं change कर सकते.

मुझे एनर्जी सिर्फ ऐसे आती हुई दिखाई दे रही थी, ये मेरे से कैसे बात करती है, ये मेरे से कैसे बिहेव करती है, ये इक्वेशन नहीं पता था कि ये उसी का रिटर्न है जो यहाँ से जा रहा है। यहाँ से आती हुई एनर्जी को हम नहीं चेंज कर सकते।